0: कि समय तमाम वह जो बाहर जो माता से रित थे फल नो नियो बोले अफेट जो वाचा साउदी बाकुमला से नियो पूजा बत्ती ने पिसल
1: Ovintis, nemak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.